ताकि जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं वो इन पर जाहिर कर दे, और इसलिए कि काफिर जान लें कि वो झूठे थे। जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो हमारी बात यही होती है कि उसको कह देते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और हमने तुमसे पहले मर्दों ही को पैगंबर बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे। अगर तुम लोग नहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो, और उन पैगंबरों को दलीलें और किताबें देकर भेजा था, और हमने तुम पर भी ये किताब नाजिल की है ताकि जो इरशादात लोगों पर नाजिल हुए हैं वो उन पर जाहिर कर दो, और ताकि वो गौर करें।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो।

0: सुनते हैं अपना घर मठियारी और की आवाज
1: GFM 93.3 FM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
4: लगी ईरान की दरख्वास्त अज दोहा में बिन्हीं मुल्कन के नुमाइंदन की मुलाकात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड

0: ट्रंप जी दावा। व्हाइट हाउस चयो आहे त ईरान सां आला सतही ॻाल्हियुनि सां गॾु टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। स्टीव विटकॉफ ऐं जेरेड कुशनर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ॿिन्ही मुल्कनि जा अमलदार मुसलसल राब्ते में आहिनि। दोहा में आबनाए हुरमत समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हियूं थींदियूं।
1: अमरीका सां सिंधियुनि ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो न आहे। ईरानी नायब परडेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त वायदनि ते अमलदार आमद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमुनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्त ताईं सघी आहे। सतह ते ॻाल्हियुनि जो हालतूं ठीक थियण ताईं जारी रही सघे थो। ईरान ऐं ओमान जी कमेटी बि गॾिजाणीअ ते हर्म्ज़ बाबति मुशावरत कई वई।

0: ईरान कतर में मंजमन कयल बासी ईरानी असासन मां जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवण हो त कतर में मौजूद अरब डॉलर्स मां जारी थियण घुर्ज। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।
1: वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ण ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइमु करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म जी हिदायत हेठि वज़ारत ख़िज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारनि बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जे मशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल जोड़ण जो आशी तरक़ीअ में अदा करे सघे थो। AI जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो।
0: नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे। रंडक वज़ीर अता तारण चयो मुआदे खे मुअत्तल। सिंतास मुआदे बाबति बाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजी पाणी तरफ़ वधंदड़

आईटी इम्तिहान के नतीजन में फेरफार कर मन पसंद रिश्वत एवज उम्मीदवार के पास मुजाहरीन मूजिब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन साख विञाए चुको है। पांजा नवाजी वो सिलसिलो बंद कर वे।

0: टेस्टी स्किन के लिए एक फ्रेश क्रीम बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो के रेडिएंट बालसा हर किस्म हाने थियो खूबसूरत आसान व्हाइट एज खूबसूरती जेका चमके हर रिजल्ट हासिल कर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: ये

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर घर मटियारी
1: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ईरान कतर में मंजमन कयल 12 अरब डॉलर जी ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशकियान जो चवण हो त कतर में मौजूद ईरान जे डॉलर्स मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई अली अकबर विलायती खे खबरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।
5: वज़ीर ऐं ज़रई पैक्स फॉर्म क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म सूबनि जे मशावरत सां क़ौमी ज़रई शोबो

0: हो चटाबेटी इम्तिहान के नतीजन में फेरफार कर मन पसंद रिश्वत एवज उम्मीदवार के पास करने जो भी इल्जाम मुजारिन मूजिब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन साख विञाए चुको है पंजा नवाजी वो सिलसिलो बंद कर वे
1: ये धिका खाई खाई ना असाजी हुकूमत मदद करे थी रोड ते वेठी लाशारी कौम के जगण के लिए सुतल लाशारी कौम सरदार असो सुतल हाने मता जागे असाके जेस तक पे बच्चो न मिलो असते वेठा होंदे
2: अस मगल ब फरवरी को स्कूल वही है रस्ते में अगवा थी वही है खंडी वही है असा सिखा जानो अस इन पंज महीन में अस कानून जो के सब दरवाजा खटाया अस तो कें न बुझी असा हुकूमत ये मुतालबो खुदा दारा अस न्याणी के बाजियाब कर अस कुछ भी ना घुरा अगर ये बचड़ी वार अगर इन औलाद वारा औलाद जो दर्द समझन न्याणी हथ बदे कुरान के सदके इमाम के सदके न्याणी बाजियाब कराए
3: जैसे बचड़ा न दिना वा असों को अस बिजली के सब जो सूर उ बचा तो असापस
4: सिंध में अगवा थियल प्रिया कुमारी उजाला परवीन समेत बेन बार बाजियाबी लाए बबरलो बायपास में चौथे डी एहतजाजी कैम्प जारी प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी तरफा लगायल एहतजाजी कैम्प में इलाके वासी सियासी समाजी अगवाण की शिरकत प्रिया कुमारी उजाला परवीन नवीद लाशारी सबा कलोड़ो फातिमा तिवड़ो ए बेन बार बाजियाबी तहतजाज जारी रखने जो ऐलान सिंध में अगवा थियल समूरन बार बाजियाब कराने जो मुतालबो
0: राधन जी रेलवे स्टेशन वट सीटीडी पुलिस हैदराबाद हथियार बंदन विच में मुबैना मुकाबलो फायरिंग जी डे वट दौरान पीरसन वजीर सोलंगी गोली लगन सब मारजी वयो सीटीडी पुलिस हैदराबाद हथियार बंदन विच में स्टेशन वेझो फायरिंग जी डे वट थी एसएसपी दादू चयो आहे त हथियार बंदन पुलिस ते हमलो कयो आहे
4: कराची के कोरंगी वाले इलाके में औरत ते मुबैना तौर पाड़ेसरी जो तेजाब हमलो मुबैना तेजाब हमले में जख्मी थियल औरत किरण खान अस्पताल दाखिल मुतासिर औरत चयो आए ता पाड़ेसरी घणे अरसे का तंग कंदो हो डोह के घरवारी भी मुलविस आए पुलिस केस दाखिल घर वजी तेजाब हमले जो नोटिस वरतो वाके की छपाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
7: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
8: GAFM 91.6

0: कैसा महसूस हो रहा है?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात

0: क्लिंग करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस डायमंड स्किन जैसी है में
1: सिर्फ ड्यूटी क्रीज होत व्हाइट टीथ माई हन में डार्क इसलिए कुदरती असली ग्लो है बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: हक सच जो आवाज हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज़।

0: प्रोग्राम तजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Al Habib RP.
3: अब आप सुनेंगे अखबार।
4: दोहा में अमेरिका ए ईरान जे नुमाइंदन विच में अज मुलाकात थींदी या न? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी दावा थी सके तो फाहिमत बतरफो मामलो आहे। अमेरिका मुआहिदे ते अमल कंदो त असां बे पंहिंजूं जिम्मेवारियूं सी। शिकियान चयो आहे त

डेब्यू टू प्लान के साथ मेरा एवोकाडो किया जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए। स्किन निखरा निखरा चेहरा ब्यूटी सोप से मिलाज।

0: कहती हैं अम्मी, मैं मनोज हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे। देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
3: It's 12 p.m. This transact is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: हेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा।
1: ये तो
2: खुशहाली की नवीद।
3: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट हले की तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ वापस आ चुके हैं जी एक कदर ब्रेक से और हमारा सेगमेंट दैट इज बोलो तो माने में आप लोग एक कदर टंग ट्विस्टर बोल के दिखाएंगे और वो जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम ये प्ले कर लें उसके बाद बताती हूँ.

और टंग टोस्टर ये है कि लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई, लैला ने लाल लाल लालटेने लंबी लकड़ी पर लटकाई, ये कहना है।

0: Okay. Very nice. Caller receive karne ja rahe hain. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se? Gazi Khan Rin bhai, tongue twister suna bolenge.
1: Ji ji bolenge.
0: Bolenge to bole.
1: Farz mein bataye ya aise bataye?
0: Kis mein bataye?
1: Farz mein, dhun mein.
0: धुन में, धुन में बता सकते हैं आप?
1: हाँ जी बता सकते हैं.
0: तो बता दें.
1: लैला ने लाल तीन लंबी लकड़ी पर लटकाए.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत गलत कह रहे हैं आप. लैला ने लाल लाल लालटेन लंबी लकड़ी पर लटकाए.
1: लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाए. लैला ने लाल लाल
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं है. लैला ने लाल लाल लाल टेने लंबी लकड़ी पर लटकाई. यस
1: लाल लाल लंबी लकड़ी पर लटकाए.
0: क्या बात है, क्या बात है. ओके, कुछ और कहना है?
1: आज मेरा गाना प्ले नहीं किया तुमने.
0: कौन सा वाला?
1: ये सुषमा ने कुछ करा जी.
0: ये कल बताया था आपने मुझे?
1: आज ही बताया था, पहले नहीं.
0: अच्छा चले, मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ. अच्छा, कौन सा गाना था आपका? चलो ये मैं प्ले करती हूँ जी, इंशाल्लाह आपके लिए. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. 03000111348.

0: Next caller, hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se?
1: Pyari yaar ji, Saeed Ahmed baat kar raha hoon.
0: Saeed Ahmed, kaise theek thaak?
1: Ji bala, shukr hai Allah pak. Aap sunao, theek ho, khairiyat hai?
0: Ji khairiyat hai, mujhe batayega, tongue twister suna bolenge?
1: हाँ प्यारी यार जी, सुनाए बिल्कुल सुनाए, और बहुत अच्छा लगता है बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हैं और आप आज प्रोग्राम सुन रहे हैं. इतने अरसे प्यारी यार जी, कहाँ गई थी आप?
0: मैं इतने अच्छे से मैं जरा घूम लूँ मैं.
1: अच्छा माशाल्लाह, टूर लगाने की प्यारी यार जी.
0: हाँ जी, बस अब हमने टूर लगाना शुरू कर दिए.
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप घूम फिर कर माशाल्लाह वापस आ गई ना अपने शहर में.
0: हाँ जी बिल्कुल, अपना शहर तो अपना ही होता है.
1: बेशकार जी बिल्कुल, ये अपना घर और अपना, चाहे बंदा कहाँ निकला जाए, जो अपने घर में सुकून मिलेगा.

0: कहीं भी नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. और कुछ कहेंगे? ओ सॉरी, टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: आपको टंग ट्विस्टर सुनाना चाहूंगा.
0: टंग ट्विस्टर बोले.
1: लैला ने लाल ट्रेन पर लंबी लड़की लटकाई.
0: नहीं, लड़की नहीं, लड़की कैसे लटकी. आपने पहले पहले पहले ना मुझे एक एक बार गौर से सुना. यस,
1: लाल लाल लैला ने लाल लाल ट्रेन लकड़ी के लाल लैला ने लाल लाल ट्रेन पर लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं,
1: लैला ने लाल लाल ट्रेन लंबी लकड़ी पर लटकाई.
0: नहीं नहीं.
1: हाँ बस, आप अच्छा लग रहा है और सुन रहे हैं हम भी बड़े शौक से.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: सिंकी है नेटवर्क सिंकी। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया बाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. आप मुझे कहते हैं आज ये रुखसार और लास्ट में कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के. अच्छा आज का टंग टोशे कितने किसने अच्छा अच्छा और सही सही बोला है वो साथ साथ आपसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी. तो आज के सेगमेंट के जो विनर है ना वो है जी गाजी खान रेंद और दुआ कवल. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आप दोनों विनर्स हैं जी आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के. बहुत अच्छा टंग टोशे बोला. तो गाजी खान रेंद और दुआ कवल आज के सेगमेंट के विनर साथ साथ कॉमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. स्मार्क किशोर कहते हैं हाय हेलो सॉरी सिस, आज ये पोस्ट खुद मेरे सामने आई है. आपको पता है अगर पोस्ट मेरे सामने आ जाए तो मेरे हाथ मेरे बस में नहीं होते. ठीक है तो कमेंट करना कोई बुरी बात तो नहीं है. अगर पोस्ट सामने ना भी आए आप सर्च करके भी तो कमेंट कर सकते हैं. क्या रोक रहा है आपको, क्या है ऐसा जो रोक रहा है कमेंट करने से बताएं मुझे. पिटाई करेंगे हम उसकी पकड़ के.

0: क्या प्ले करना चाहिए लास्ट में हमें? मेरे ख्याल से मेरे पास एक गाना लाइन अप है, अगर तो मुझे कुछ समझ आता है.
1: दिल की मुश्किल,
0: मैं जरा गाने इस तरीके से चेक करती हूँ, बताऊँ आपको. ऐसे चेक करती हूँ. चलो ये सुनते हैं लास्ट में, ठीक है? शुरू से प्ले करते हैं. अच्छा गाना है. ओके, सो फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिटचैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक. सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी, और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लव सबल पर थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: आपका जी अपना शे अपना घर और
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: के बाजे आए

सिंध हाई कोर्ट जी आईनी बेंच जो करप्शन वारा रेफरेंसिस खे ॿीहर एहतसाब अदालत ॾांहुं मुंतकिल करण जो हुकुम। नैब जूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर, एहतसाब अदालतुनि जा गूणा फ़ैसला कलदम करार। एंटी करप्शन या ॿियनि अदालतुनि ॾांहुं मोकिलियल रेफरेंस फौरी तौर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ्तिखार क़ाइम खानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रुपियनि जा रेफरेंसिस बहाल। LPG कोटा, नेशनल बैंक, KPT ऐं कराची में सरकारी ज़मीननि जी गैरकानूनी मुंतकिलीअ वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा। अॻूणे IG सिंध ग़ुलाम हैदर जमाली ख़िलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द, रेफरेंस लाॻापियल इदारे ॾांहुं मोकिलण जी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट फ़ैसिले में चयो आहे त जेकॾहिं गैरकानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़ीसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे।

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान ऐं नतीजे जे ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश। अदालत पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ पंज रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़। अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतराज़, दरख़्वास्तनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी सदा। एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्तनि जो ॿुधण जो हुअण बाबति फ़ैसिलो कयो वञे। अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो, नौकरियूं अचणियूं वञणियूं आहिनि, मामले खे हमेशह लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कयूं वेंदियूं। जस्टिस निसार भमरो चयो त पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो, जांच जे लाइ मामिलो नैब ॾांहुं मोकिले छॾियूं था। जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिब आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो हो, मामिलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था। पास थींदड़नि खां इम्तिहान वठंदी पास थींदड़ सिंधी उर्दू में बि मज़मून लिखी ॾेई सघनि था।

हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जो हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का गडल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उम्मीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। कोर्ट जो अमलो रात देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड ऑफिस पहुची फेल उम्मीदवारनि

पेपर्स जी कॉपीज तहवील में वरतियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो।

हैदराबाद में पुरानी दुश्मनी तथा हथियारबंदन जो घर से हमलो एक जनो कत्ल नसीम नगर थाने की हद अली पैलेस वाली घिटी में हथियारबंदन घर से हमलो कयो फायरिंग में जहूर अली सोलंकी मार जी वयो पुलिस वजह वाक्य पुरानी दुश्मनी तथा पेश आयो है वधिक जांच कई पई वने कराची के इलाके क्लिफ्टन में दो तलवार वेझो हथियारबंदन की फायरिंग चार जना जख्मी लाइसेंस ब्रांच वेझो फायरिंग में जख्मी थियलन के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो उमरकोट वेझो स्कूल की भित किरी पई टे बारियों दबिजी फौत गोठ कमोरी में भित किरण सबब सुगरा थी अबू बकर किंजा थी अब्दुल समद रायबा थी फारूक कोरी दबिजी वयो गोठानन बारियों के भित हेठा कढ़ी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुंचाया डॉक्टर्स पारा फोतगी की तस्दीक बारियों जा लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले

0: आहे त वाहन ऐं शाखनि जी पुछड़ीअ में पाणी नाहे पहुतो, फसल सुकी रहिया आहिनि। आपंड जे आबादगारनि खां रिश्वत वठी मोगा टोड़े छॾिया आहिनि। पाणी चोरी रोकराए पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो मुआशी क़तल बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो ले।

चांद सितारों तो कम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहराबू सकरण और जनाब एश वाइट एश ब्यूटी तरीके साथ आप हमारे साथ हमारा साथ रहता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती की बातें की जाती है और इसी के साथ साथ जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भाई आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी साथ ही साथ अपना भी तारफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रोवेजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एंड ड्रामास प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत तक ये हालत उनके से ही आपकी प्रोग्राम

0: बात है जो सारी लड़कियां सुनना चाहती हैं। ओके बहुत शुक्रिया। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो अपनी बातों से जो और उन्हें कुछ मिलाकर उन्हें खास बनाता है। उसके अलावा लाली माजूदी वाली घूम असलाम की आयो एफ एम जी आन वान शान उम्मीद ठीक हूँ ना हमेशा वांगुर आई महकंदा रहंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हुजे तव्हांखे दुआ कजो मुंहिंजे लाइ बि इलाही सारी। और बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में ज्वाइन होते जा रहे हैं सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। प्रोग्राम आप सब लोगों का है। पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए आप कौन हमारे साथ मौजूद हैं कहाँ से सुन रहे हैं और टॉपिक ये अगर कल ना होता तो फिर आज आप क्या करने वाले हैं जल्दी से बताइए और डायल करते जाइए 03-15-799-0595। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वापसी जल्दी आप लोगों के पास यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुनिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए फेयर निखरा ताजगी के साथ। ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

व्हाइटिश लवली क्रीम मिल रही है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है और व्हाइटिश का लोशन आपको मिल रहा है, व्हाइटिश का हेयर रिमूवल लोशन आपको मिल रहा है जो कि तीन भी व्हाइटिश वालों ने लिया है। तो आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए और हमेशा मुझे ही हासिल करना है। कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट और खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियाँ जो है ना वो बांटते भी रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर खूबसूरत हो जाते हैं ना तो हम दूसरे इंसान को नहीं बताते कि भैया हमें खूबसूरती जो मिली है वो क्यों मिली है। अगर आप भी ऐसे इंसान है तो आप कोशिश किया करें कि आप लोगों को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि आप इस्तेमाल करें व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जो खूबसूरती मिली है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट से ही मिली है। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट में फुल नेचुरल अजाज इसके अंदर मौजूद है। अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि नाइट क्रीम है, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिलेगा, मिल्क मिलेगा, एलोवेरा मिलेगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं और वो अज्जा हैं जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो हासिल करना जो है ना वो उतना ही आसान हो चुका है जितना आप शायद सोचते थे। तो खूबसूरती को हासिल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी जल्द को फ्रेश बनाएगी, गोरा बनाएगी और आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी सोप आपके लिए अवेलेबल है। व्हाइट एश ब्यूटी सोप फुल नेचुरल अजा से तैयार किया गया है जिसे आप ऑल स्किन टाइप के लिए है, अवेलेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाइट एश का साबुन नहीं लगाते या फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, व्हाइट एश का आपने फेस वॉश यूज करना है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, एंटी एजिंग के लिए है और साथ साथ क्रीमी फेस वॉश है। इतना जबरदस्त से कि आप लगाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे आय हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि आप लोगों के लिए फेयरनेस फार्मूला है। फेयरनेस क्रीम का मतलब ये होता है कि अक्सर वो लोग जो कि भाई मेकअप से थोड़ा सा दूर भाग रहे होते हैं, गर्मियों का सीजन आ जाता है तो मेकअप नहीं लगा पाते हैं लड़के लड़कियां, कोई ऐसा उनके पास क्रीम होना चाहिए जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाता रहे, खूबसूरती को मेंटेन करे। और आपकी जो ये खूबसूरती, अगर आप बाहर जाते हैं, कोई काम काज कर रहे हैं, धूप में जाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो कि आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाए और आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन भी रखे। तो व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार की गई है। 30 विटामिन के कैप्सूल्स के साथ साथ विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। क्या बात है, कुल मिलाकर आपके लिए परफेक्ट सा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है व्हाइट एश लवली क्रीम। व्हाइट एश लवली क्रीम आप हर उम्र का इंसान इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख्वातीन हैं, हर कोई इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी भी ओकेजन में आपको जाना है, कोई भी ऐसी मीटिंग है, तो आपने व्हाइट एश लवली क्रीम बस इस्तेमाल कर लेनी और आप यूं झट से रेडी हो जाएंगे। तो व्हाइट एश लवली क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन बढ़ती जाने की बढ़ती उम्र में आपकी स्किन जो है वो खराब होती जा रही है तो वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी। आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं या इस तरह की चीजें जो कि आप नहीं चाहते आपकी स्किन के ऊपर हो, तो व्हाइट एश लवली क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन की सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगी। और अगर आप एक्नी की वजह से परेशान है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है ना मेरी जान, क्यों परेशान होते हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इतने सारे निशानात हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आपकी स्किन के साथ है, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो बस एक प्रोडक्ट आपको परचेज करना है जिसका नाम है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे के प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा बल्कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। कोई टेंशन की बात नहीं कि इसके अंदर केमिकल डाले गए होंगे, नो नेवर, इसके अंदर जो है ना फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप ट्राई करके देखिए आपको मजे आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे और डायल करेंगे 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर के ऊपर रابطہ करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। ये जो इतने सारे लोग आकर मुझे फेसबुक पर कमेंट करते हैं या फिर बोलते हैं ना कि बाजी असा नंबर ते रातो कयो था पर नंबर वारा जिकन कॉल न था करन, तो मां जदी उनन का पूछो तो छा मसला है बाबा, तां कॉल छोन था करनो मानन जी, तो उनन खबर आ मुखे छा चयो, उनन चयो तो बाबा मानू जिकन न डारो बेजार करना है, तंग करना है, मिस कॉल इना है, वरी कॉल न करना है, मिस कॉल दई करी बंद करी छदीना है। तो अगर तमा या हरकत कयो था सिद्धी कॉल कंदा कयो न, कॉल कयो जे अगलो मानू खणे तां सा गाला छा मसलो आ छा खपे, पर जडी तव्हां उन्हनि खे मिस कॉल ॾींदा पोइ त बाबा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे न। सो तव्हां कॉल कयो, तव्हां मैसेज कयो, उन्हनि खे पंहिंजो मसलो ॿुधायो, तव्हांखे

प्रोडक्ट अवेलेबल कराइण चाहियो था ऐं तव्हां किथे रहो पिया त जीअं हू तव्हांजी ॻाल्हि सम्झनि ऐं तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइनि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ठीक हो गया और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं कल करूंगा मैंने ये काम कल करना है कल के ऊपर सारे अपने काम थोप देते हैं तो अगर आप फर्ज करें कल होता ही नहीं तो आप आज क्या करने वाले हैं।

वासु भाई हमारे साथ मौजूद है। वासु भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और चाचा खाले टूड़ी जो आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा से जो हवैयो। मैं बिल्कुल मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते हैं कल क्यों नहीं आई? आई थी कल, मैं आई थी बाबा, कल मैं आई थी। फेसबुक पर थोड़ा मसला था, फेसबुक लाइव नहीं था, कल मेरा शो था। मौलाई मुजाहिद 2000 हमारे साथ मौजूद है टूप चूसल से। वालेकुम अस्सलाम। मां ठीक आए? हाँ मां ठीक आया। तां ॿुधायो कीअं आयो? ठीक ठाक आयो। ऐं ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया? रोज़ प्रोग्राम में शामिल थियो पिया, रोज़ प्रोग्राम ॿुधो पिया, पर प्रोडक्ट हणो था कोन। इहा त मूंखे ख़बर ई कोन्हे का, सो कहिड़ो प्रोडक्ट कहिड़ो माण्हू हणे पियो इहो मूंखे ॿुधाईंदा हलो। ओकरी चाचा खालिद कहते हैं कल था ही नहीं हमारे, हाँ क्योंकि आप नहीं आई थी और आज तो आप आई हो, तो एंजॉयिंग योर शो, योर टॉपिक आंसर। अच्छा अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो असा पांजी सीट ते अची वयासी, डाडो बल्लो कयव। ज़ीशान राजपूत हमारे साथ मौजूद है। इजहार लाशारी को सलाम। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मौलाई मुजाहिद बाजार बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं। इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है। सोनो खान लाशारी मेरे को खास से भाईजान हेलो। अच्छा ये इस गाने का नाम है इसीलिए आ रहा है, वरना इस गाने के अंदर जो कुछ बोल रहा है कखा समझ नहीं आ रही। अरे समझ कुछ नहीं, लेकिन वाइब बड़ी है भाई, वाइब मजे की है। तो गाना बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हो और साथ साथ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, लाली कहती है कि अदी वो एक है भीतर रड़ कयो, गरीब जो गुजारो थी वेंदो, वडो मिस करे वे पई। अदी वो छाला तांजो खुश आयो, काफी टाइम खां पोइ तां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थी आयो, काॾे गुम थी विया आयो बाबा? ईअं न कंदा कयो, रोज ईंदा कयो, रोज रोज। और ज़ीशान कहते हैं कि कल अगर ना होता तो आज में एक दिन का सीएम बनता। क्यों भाई सबको एक दिन का सीएम बनना होता है? ये बात मुझे समझ नहीं आई आज तक। ऐसा क्या ही कर लेंगे आप एक दिन के अंदर, बताइए जरा मुझे। ओगरी किशोर भाई आ चुके हैं। हेलो हाय अदा, सॉरी फॉर देर, इट्स ओके, जा तुझे माफ किया। फहद अली हमारे साथ मौजूद है। हेलो कहते अदी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। माशूक रिंद भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। अरे चाचा खालिद कहते हैं सलाम टू मीर इरफान सियाल साहब, यू फॉरगेट माय रिक्वेस्ट, आप प्रोडक्ट डी स्किन क्रीम सोप एंड फेस वॉश, डी स्किन का फेस वॉश और सिर्फ क्रीम आई है, तो आप उन्हें जिस नंबर के ऊपर मैंने बताया ना राबता कीजिए, आपको जरूर मिल जाएंगे।

अरे भाई एक उम्र ही है जो बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती, बाकी तो इनकम हो या फिर ये सारी चीजें बढ़ती ही अच्छी लगती हैं। तो बढ़ती उम्र अगर आपकी है और आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकिए जरा और आप हमेशा यंग रहिए और जवान जवान दिखिए और इस्तेमाल करते रहिए वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और साथ साथ गुलाम कादर भट्टी हमारे प्रोग्राम में है, कहते हैं खास लोगों को सलाम मटियारी से, आप हमारे साथ ही प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, सॉन्ग सुनेगा मेरे पास तुम हो।

0: का दिल भी
1: पिघल जाएगा।
0: जो दिल को छुएगा वो जल जाएगा।
1: हाँ जी गाल तो वैसे थी।
0: ना रुकना ना रुकना हम जैसे हैं हमको तुम रहने दो ना।
1: हाँ जी गाने इतने मजे के लगा रहे हैं, मुझे गानों के अंदर ना गुमी हो जाती हूँ। आपके मैसेजेस है तो जरा उनको भी पढ़ लेते हैं। मोतिया से थानी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। नबी दोस्त बलोच हमारे साथ मौजूद है, कह रहे गुड शो थैंक यू। चाचा खालिद कहते हैं जय खान ड्रिजो वो ना की मिस कॉल कभी आना बाबा ड्रिजो न ड्रिजो पानो मसलो बधाई। और हे अनवर भाई कह रहे हैं चापे की जिससे नाराजगी है उसे माफ कर दे, जिससे मोहब्बत है उसे बता दे, ईगो गुस्सा और वो पहली बात करे वाली बातें तब तक ही चलती हैं जब तक हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। बिल्कुल जी, कितनी अच्छी आपने बात कर दी। देखिए अच्छा बख्तली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो किशोर भाई कहते सॉरी कॉल अच्छी वही हुई टॉपिक के वराय बुधाए टॉपिक यू आ असा खोर गालू जिकन सुभाणे ते छडीना ना सुभाणे दो तसा ही कम करना सी सुभाणे ही थिंदो सुभाणे हु थिंदो त अगर फर्ज कयो सुभाणे थे ही ना त पोई तवा छा करना।

ये गाना मेरी अम्मी का फेवरेट गाना है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दर्द दिल कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करती हूँ वो मुझे दरिया में डाल देता है, आजकल यही चल रहा है, तो कोशिश करेंगे समझ गई होंगी। आधी पोस्ट को भी लाइक और शेयर कीजिए, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करना होता है, यानी कंजूसी न करना करो। और से डायल करते रहिए 03-15-799-0595 नंबर से कॉल कयो या मैसेज कयो, उन्हनि खे ॿुधायो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऐं तव्हांजे एरिया में नथो मिले व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम नथो मिले, व्हाइटिश ब्यूटी सोप नथो मिले, व्हाइटिश फेस वॉश नथो मिले, व्हाइटिश लवली क्रीम नथो मिले ऐं व्हाइटिश जो डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब नथो मिले, समझो था। इहे सभु प्रोडक्ट तव्हां अवेलेबल करायो जीअं तव्हां बि सुहिणा थियो बाबा, तव्हां छो भला पोइ हिते रहिजो, सभु सुहिणा थी वञनि तव्हां न, इहो नाइंसाफ़ी आहे तव्हां, मां न चाहींदमि तव्हां सां नाइंसाफ़ी थिए, तव्हां सभु सुहिणा थियो, ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत रहो ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो। टाइम थियो आहे हाणे वञूं था न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां काॾे न वञिजो, हिते वेठा हुजो, मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए खूबसूरत होते।

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहान ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश। अदालत पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ पंज रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़। अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतिराज़, दरख़्वास्तुनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी इस्तदा। एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्त कयो वञे। अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो, नौकरियूं अचणियूं, मामले खे हमेशह लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कयूं वेंदियूं। जस्टिस निसार भंभरो चयो त पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो, जांच जे लाइ मामलो नैबदा मोकिले छॾियूं था। जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिब आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो हो। मामलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था, इम्तिहान वठंदी। पास थींदड़ सिंधी या उर्दू में बि मज़मून लिखी ॾेई सघनि था। हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदी तहवील में वठी छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सेशन कोर्ट जो अमलो राति देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस पहुची फेल उमीदवारनि जे पेपर्स जूं कॉपीज तहवील में वरितियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो।

सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में टे ॼणा क़तल। हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी ते हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, हिकु ॼणो क़तल। नसीम नगर थाणे जी हद अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदनि ज़हूर अली सोलंगीअ खे क़तल कयो। जेकोबाद वासी नौजवान कराचीअ में क़तल। चनापाड़े वासी नौजवान परवेज अहमद कटो खे शाह लतीफ़ टाउन में क़तल कयो वियो। हिंगोजा वेझो फुर मज़ामत ते मुमताज़ मारवाड़ी क़तल। हिंगोजा पुलिस पारां फोरुनि जो पीछो करे ब जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा। उमरकोट वेझो स्कूल जी भित किरी पई, टे ॿारियूं दॿिजी फौत। ॻोठ कमोरी में भित किरण सबब सोगरा धीउ अबू बकर, किंजा धीउ अब्दुल समद ऐं रायबा धीउ फारूक कोरी दॿिजी वयूं। ॻोठाणनि ॿारनि खे भित हेठां कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो। डॉक्टर्स पारां फोतगी जी तसदीक। ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले। ज़रई पाणीअ जी खोट ऐं चोरीअ ख़िलाफ़ नवाबशाह, टंडो बाघो ऐं फैज़गंज में आबादगारनि जो एहतजाज। नवाबशाह में दौड़ तालके जे मनोहरो ऐं सकरन शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। टंडो बाघो में नवमाणिक वाह जे आबादगारनि बदर चौक ते धरणो हुयो। फैज़गंज में अलीगंज शाख जे आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवणा आहे त वाहन ऐं शाखनि जे पुछड़ीअ में पाणी नाहे पहुतो, फसल सुकी रहिया आहिनि। पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो मुआशी कतल बंदि कयो वञे। अवामी तहरीक पारां ॿारनि जे अॻवा ऐं पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। टंडो मोहम्मद खान जुदो ऐं तंगवाणी में मुज़ाहिरा। टंडो मोहम्मद खान में अलपता चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो। जुदो में एहतजाजी रैली कढी बैंक चौक ते धरणो हयो वियो। तंगवाणी में कारकुननि एहतजाजी रैली कढी। अॻवाणनि जो चवण आहे त पाणीअ जी खोट सबब गुरबत ऐं बेरोज़गारी में वाधि थी रही आहे। गुम थियल ॿारनि खे बाज़ियाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। डिप्लो में पीअण जे पाणी जो बहरान संगीन थी वियो। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जो एहतजाज। अवामी तहरीक, जमात इस्लामी ऐं जेवाई जे कारकुननि बदीन रोड ते धरणो हयो। अॻवाननि जो चवण आहे त डिप्लो वासियुनि खे ॿियूं सहूलियतूं त नथा ॾेई सघो, घटि में घटि पीअण जो पाणी त ॾियो। टिनि महीननि खां मिठो पाणी नाहे मिलियो। टिनि ॿारनि जी थां मुबैना अगवा। मज़ामत ते टे ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ जा खोसो खे अगवा करे फायरिंग कंदा फरार थी विया। मज़ामत करण ते औरत जो मुड़ुसु करम खान खोसो, आयो खान खोसो ऐं हिकु औरत ज़ख़्मी थी। ॻोठाणनि जो वाक़िए ख़िलाफ़ एहतजाज। औरत खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो।

यानी क्या होता चीजें हैं, ऐसे बहुत से काम है जो कि मैं कहती हूँ भाई कल करेंगे, कल देखा जाएगा। तो अगर कल आता ही नहीं, कल होता ही नहीं, तो फिर क्या कहने वाले थे हम, क्या करेंगे आप। ओके जी, शामिल प्रोग्राम होते जाइए 888-1 और फेसबुक पर बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइए, और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी बताइए, और साथ साथ डायल करते जाइए 03-15-799-0595। ठीक है, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रहा है। अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने क्या करना है कि अब सिलेक्शन नहीं होगी, इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। हाँ जी, क्योंकि फेस वॉश भी जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी जरूरी है, तो दोनों चीजें इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ साथ वो लोग जो कि भाई अपनी स्किन को लेकर परेशान होते हैं काफी कि भाई हमारे सब प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, अब मैं ये कहती हूँ कि भाई सेंसिटिव स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल जिनकी स्किन हो, नॉर्मल टाइप हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, या फिर मतलब मुख्तलिफ हो सेंसिटिव स्किन से, तो वो ये कहें कि भाई असांजे लाए क्रीम ना असां तो न लगाईंदासीं, बाबा तां भी लगाए सको था, सेंसिटिव स्किन वारा भी लगाए सकन था, हर कोई इस्तेमाल करी सके थो, छो त ही ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। ऑल स्किन टाइप वारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा कयो जे तव्हांजी हर स्किन जेका आहे न उहा रिलैक्स रहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे रिज़ल्ट मिलंदो रहे, तव्हांजी स्किन स्मूथली जेको आहे न उहा ख़ूबसूरत थींदी रहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वाइटमिन ई बीट्स सां तयार थियल आहे, हिन जे अंदर माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे सिर्फ़ ॿिन रातिनि जे इस्तेमाल में रिज़ल्ट ॾियण वारी आहे। सो ॿिन रातिनि जे अगरि इस्तेमाल में तव्हांखे रिज़ल्ट मिले थो, बाबा ॿियो तव्हांखे छा खपे, सो तव्हां ज़रूरु इस्तेमाल कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी, ब्यूटिफुल बणाईंदी, ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह शाइन कंदी रहंदी। उन खां अलावा सिर्फ दो दिनों में जो है ना वाजे आपको रिजल्ट देने वाली है, बहुत ही अच्छी है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, एक नाइट क्रीम है, इसे आप इस्तेमाल करके देखिएगा। जदीद अज्जा से तैयार की गई, जिसके अंदर अल्फा आर्बोटीन शामिल है, कोजिक एसिड शामिल है, ग्लूटाथायोन है, और उसके अलावा रात भर आपकी स्किन के ऊपर ये बेहतरीन सा काम करती है, जब भी जाकर आपको दो रातों में बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। तो लाजमी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, और साथ में लगाइएगा डी स्किन फेस वॉश, और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और इतनी सारी क्वालिटीज के साथ साथ जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करते हैं तब आपको मिलता है बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट। तो आप इस्तेमाल करके देखिए, खूबसूरतियां हासिल करती रहिए और खूबसूरत होते रहिए। ओके जी, साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। ये नंबर आपकी सहूलत के लिए है, इसके ऊपर कॉल या फिर मैसेज कीजिएगा, उन्हें बताइए कि आप भी लेना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप भी परचेज करना चाहते हैं, अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो वो जल्दी से आपके एरिया में अवेलेबल करा देंगे। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। ओके जी, तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फेसबुक वाली ऑडियंस हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर ऐसा है, मैंने ये सोचा है कि हम एक दिन कॉल्स पे करेंगे, दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन कॉल्स पे करेंगे, यानी कि हिकड़ी ॾींहं जो गैप हूँ असाने प्रोग्राम में, सो अस कल कॉल्स वरतियों से, सो अज असा वरी कॉल्स न वठंदासीं, वरी सुभाणे कॉल्स वठंदासीं। ठीक आहे, सो ये हमारे साथ मौजूद हैं पैनल की जाने बातें, तो आपके काफी मैसेजेस जमा हो चुके हैं। तो मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते भाजी व्हाइटिश ब्यूटी शो नाइस आहे, और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम भी नाइस आहे, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। और कहते हैं अब्दुल्ला महर के हमारे साथ हैं जी शुएब महर भी हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं वकास अली फ्रॉम लाड़काना, कहते प्लीज सॉन्ग सुनाए नथो विसरी मुखा नथो विसरी। आए हाय, चलें गानों की फरमाइशें तो काफी सारी आ चुकी हैं प्रोग्राम में, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके गाने लगाते जाएंगे जी टाइम टू टाइम, ताकि हम गाने एंजॉय करते रहें। और वकास क्या कहते हैं, गाना ठीक है और डेडिकेट किया ऑल स्वीट लिसनर्स के नाम। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम। अदी टॉपिक कल नहीं होता तो हम आज ही अदा कर देते फर्ज और कर्ज। क्या बात है जी, क्या बात है। और ये हमारे साथ मौजूद हैं चाचा खाले जुड़ी, जो बिल्कुल आपका गाना हम लगाएंगे, बहुत अच्छा आज आपने गाना फरमाइश किया है। और ये हमारे साथ हैं जी, अर्ज किया है दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो जरा याद रखना, हमें तो आदत है आपको याद करने की, आपको बुरा लगे तो माफ करना। गुलाम शबीर तुनियो भाई।

अगर जी विलेज गुलाम कासम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरा से दिलावर हुसैन सोलंगी है। बाजी सदर आप कैसी हैं? आज एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो आप क्या करेंगी? हमें मास्टर मंजूर का गाना सुनाएगा। थैंक यू डेडिकेट नजीर सोलंगी, अली जान सोलंगी, मुदस सोलंगी, आसिफ एंड फियाज अली सोलंगी के नाम। ओके जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, उसका सवाल का जवाब ये है कि मैं बनना ही नहीं चाहती। मैं बनूंगी नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों के अंदर। और ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम। अदी टॉपिक कल नहीं होता तो आज मैं सारा दिन खाता और पीता, बस गाल खत्म। अच्छा मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से वीआईपी प्रोग्राम में निगत नाज का गाना सुनाइएगा। ओके जी, आपका गाना सुनेंगे हम और आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान भाई कहते हैं कि जदे पंजाय पर जो किताब खोलियो सी तो हर सफेदे लिखल हो केर भी कहजो ना ही अली तक मिले उ पांचन की तरफा।

0: इंतजार का।
1: हाँ जी, यह तो गाला है। फहीम शेख कहते हैं, सिद्रा ये टूटू क्या है बताओ, मुझे पता नहीं है। यही बात है कि अगर इस तरह के लोगों को बिठाया जाता है ना बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर, फिर ये ऐसा ही होता है हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, तो बस आप छोड़ दें। ये एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी समझ आई होगी, तो आप अकेले ही नहीं है, ये पूरी जनता आपके साथ है। अच्छा, सोनी भी हमारे साथ मौजूद है जी। सोनी कहती है, आप ही देखे ना, मैं मम्मा को बोल रही हूँ, जब तारक भाई की शादी होगी तो मैं सारी शॉपिंग इस्लामाबाद से करूँगी। आप ही मम्मा बोल रही हैं कि उससे पहले तुम्हारी शादी कर दूंगी, तो अच्छी बात है ना अपनी शादी की शॉपिंग कर ये ज्यादा फायदे में रहेंगी आप। या मैं भी आपकी मम्मा के साथ हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ है मौजूद, आप कैसी हैं सिद्रा जी? कुछ दिन आमों के बाग में मसरूफ थे, आम एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए जी, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ 78 मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीरा लाल, पवन कुमार, संजय कुमार, सब भाइयों को वेलकम करते हैं। या हकीकत बाबा कुरब आज को पंद कराइंदो जी, तो असने प्रोग्राम में अचू था ये ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरतियां। जो दी हमारे साथ असलापी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसे हैं? डियर व्हाइट एश सिद्रा मुस्कान क्रीम का नाम होना चाहिए था, फिर तो मैं गर्मी में भी यूज कर दी। चलिए फिर आप अभी इस्तेमाल करके देख सकती है, क्योंकि ये भाई इतने मजे के प्रोडक्ट, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है, आप लास्ट भी लगाइएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं।

हाँ बाबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुरू जानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ अपनी कजिन्स के साथ। आज मेरी कजिन समी की एक फरमाइश है, शाहिद बबर का गाना सुनेगा, कोई सा भी सुना दूँ। चले मैं लगाती हूँ आपके लिए गाना। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करती है। हमारी प्यारी लुलू भी हमारे साथ मौजूद है और शोनी कहती है आप ही जान, वो मेरी। हाँ तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे आप फेसबुक वालों। अच्छा सुमार किशोर भाई कहते हैं सुबह नथिए को सदरा या किशोर नाये जो सुबह नहीं दो। अच्छा दर्दी दिल कहती रुको रुको मैं भी आ गई हूँ। अच्छो जो भी हो वे हो बिस्मिल्लाह। अनवर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलमान कहते हैं कल को स्कैप करते हुए आज और अभी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर देते हैं। योर टॉपिक आंसर बुआ जी, क्या बात है, क्या बात है, परचेज कीजिएगा ठीक है। और फहद अली हमारे साथ है, थैंक यू फहद अली। अच्छा वो तो किशोर भा सुबह दीदी ना माँ सुबहानी जी गाल कर। अच्छा आदिल कहते हैं जवाब जे करे सुबाणे न हुजे त अज असी ही सब कंदासी। पहिरियों अलार्म के टोड़े किचरे में उछलाए छॾींदासी। सुबुह जो जल्दी उथण जो कम सुबाणे जो हो। ॿियो भाउ जो चार्जर वठी ड्रामा ॾिसंदासी, हू कावड़ कंदो पर असीं चवंदासीं त वापसि सुभाणे कंदासीं। मिठाई वारे खां ॿ किलो जलेबी उधार वठी अकेलो ई ख़तम करे छॾींदसि। अॼु जो मज़ो सुभाणे जो मसलो सुभाणे ॾिसंदासीं। ओ या पाणी वारा माण्हू जेके न ॾाढा मतिलब अॼुकल्ह असांखे बेज़ार कनि था, उहो सुभाणे ते कमु न छॾींदा कयो। इन लाइ मूं अमां खां सवाल पुछो त अगरि सुभाणे अचे ई न हा त पोइ तव्हां छा कयो? हा पोइ कहिड़ो बहानो हुयो तव्हां वटि? ज़ीशान कहते इस क्रीम का मैंने स्क्रीन शॉट लेकर आगे सेंड कर दिया है, वो परचेज कर लेगी, अब मेरी कमीशन तो बनती है। इते भी कमीशन खपे? चलो तव्हांजी कमीशन जे बदिले तव्हांखे गानो था ॿुधाए। ॿुधायो कहिड़ो गानो ॿुधंदा?

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए जनाब, और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। जल्दी से नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और परचेज करते जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास। तो मौजूद रहिए, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: GAFM 88 Network सिंध की आवाज,
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88.8 पर मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मेरप्रकाश मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लोग।

जाना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी में जाना चाहते हैं, आप लोगों को पता होना अच्छा है ना, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं और आप लोगों की स्किन सेंसिटिव वो आड़े आ जाते हैं, आप लोगों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से थोड़ा सा दूर चले जाना होता है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट मजीद खराब हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग अब तैयार हो जाएं क्योंकि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते साथ ही आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह के अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है। माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, बहुत ही नई नई इस तरह की विशेष के साथ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी खूबसूरती उनको मिलेगी और खुशहाल रहने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल में आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देता है। तो जल्दी जल्दी से आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना, एक नाइट क्रीम है इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और साथ में आपने इस्तेमाल करना है डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश लगाएंगे इतना रिची रिची सा आपको महसूस होगा ना, यानी कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आए जितने तवा इस्तेमाल करना तवा के अंदाजो थी वेंदो ने शेयर जो छो त हिन जे अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम मौजूद आए। देखो तवा जी स्किन के हाइड्रेट रखंदो आए, क्लीन कंदो आए, आई मॉइस्चराइज कंदो आए। सो एडो जबरदस्त प्रोडक्ट अगर तवा जे एरिया में अवेलेबल ना है तो उनके अवेलेबल करायो आई डायल कयो 0315-799-0595। ओके जी, ये सॉन्ग सरोबर जी की आवाज में जी फरमाइश असांके लुबी कई हुई। ओके जी, आने वाले सब लोगों को वेलकम कहा जाता है प्रोग्राम में, हमारे पास टाइम जो है बाकी थोड़ा सा बचा है तो क्या कह रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत गाना। और साइमा मीर हमारे साथ ही कहती है, अस्सलाम वालेकुम असल मक्खन जैसी आजे सिद्रो की आले निगत आई भी और गई भी, मैनू पता ही नहीं चला टॉपिक कल ना होता तो के बाद क्या। और हाँ जी निगत नाज आ भी गई और चली भी गई। बिचारी कहती है आप जान कभी आतिफ का गाना भी लगाएंगे जी। आकाश अली पीर जादो माई ब्रदर दिली जान पीर जादो मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाहिद बोजार कहते हैं ठूप चूसल से, टॉपिक अगर कल ना होता तो हम बोलते, शाम को आ जाना ना होती तो हम बोलते, मामा दोपहर को आना, अगर दोपहर ना होती तो हम बोलते आधे घंटे के बाद आ जाना। हाँ असम या एकड़ी क्वालिटी आए तो असम बहाना डाटा बढ़ाईंदा आयो। सो यह हकीकत सफा जबरदस्त तरीके से तुम्हारा टॉपिक एक्सप्लेन करवा है, सो वेरी नाइस। और किशोर भाई कहते हैं कि वफा मिले ना मिले ए खुदा दगा ना मिले, कोई मिले या ना मिले मगर किसी से मिला हुआ ना मिले।

ओके जी, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर सुन रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं. आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो उनके बारे में बताते हैं और आप इस्तेमाल भी करते हैं और आपको वो वाली खूबसूरती मिलती है जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और डायल करते रहिए 03-15-799-0595.

ओ जी किशोर भागी ने टॉपिक मजाक से हटकर मैं कभी आज के काम कल पर नहीं छोड़ता क्योंकि कल किसने देखा है ओ यह गाल। और हमारे साथी जी दर्दे दिल कहती हैं कि एडो सोनो एडो सोनो आही तारीफ शाह चंदा जानी कया ये सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट हम सब की तरफ से आपको। मेरे साथ अलीजा अस्मा और आयशा जाहिदा शो सुन रही है और एंजॉय कर रहे हैं। चलें स्वीटी आपका गाना हम कल सुनेंगे क्योंकि आप जानती हैं कि आज जो है ना वो लिस्ट फुल हो चुकी है। आपने थोड़ी देर फरमाइश कर दी। ये होता है जब आप देर से गाना फरमाइश करते तो आपका थोड़ा सा गाना स्किप हो जाता है, तो पहले पहले फरमाइश किया कर। अच्छा दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है कराची से, आप हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है कि एक दिन में सारे काम पॉसिबल नहीं, कल नहीं होता तो फिर परसों कर लेते। क्या बात है भाई, क्या बात है, आप लोगों का जवाब ही नहीं। अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि मेरे बहुत करीब डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलती है क्योंकि मैं रहता ही रेशम गली में हूँ। क्या बात है, मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करी या नहीं, लेकिन आपने खुद ही बता दिया क्योंकि जो लोग रेशम गली में रह रहे हैं, रेशम गली के आस पास है, वहाँ अगर आप जाते हैं रेशम गली के अंदर तो आप लोगों को हर एक जगह पर जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, अवेलेबल हो चुका है और साथ साथ व्हाइट एज के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो फहीम आप व्हाइट एज लवली क्रीम भी परचेज करके देखिएगा, वो तो डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप परचेज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत वाले अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल जी ये खास बातें हैं जो कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कल कॉल्स ली थी, कल वो चिचमिच वाली कॉल्स थी, ये मुझे अंदाजा हो गया कि एक दिन सही कॉल्स लग रही, दूसरे दिन चिचमिच वाली। तो कल चिचमिच वाली थी तो हम जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हजार खान कहते हैं कि अगर कल ना होती तो कल का शो भी आप आज कर लेते। हाँ कह सकते हैं।

शायद गूंगी अली हमारे सारे सक्रिय से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हेंसी लाली कहती है जाने फिर दोस्त जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज थी वे वा चवे थी सिद्धरा के बुधायो वाह वाह वाह वाह बारन चाबी चैनल मोनेटाइज थी वे।

0: अच्छा बिलाल अली भी हमारे प्रोग्राम में हाणे खां ॿुधेंगे पहिरियां खां ॿुधेंगे न ॾाढो मज़ो हुयो आज मुझे लग रहा है प्रोग्राम अच्छा था और मुझे लग रहा है कि अच्छी अच्छी मूड में थी मैं आज और कहते हैं फहीम कि आज खरीदूंगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम पर बताओ कैसी है बहुत अच्छी है मैं तो पूरे प्रोग्राम में बताती आ रही हूँ और कितना बताऊं आप परचेज कीजिए इस्तेमाल कीजिएगा फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगे और कहते हैं बिल्कुल आप नहीं मैंने ले ली है मुझे मतलब पता है कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बस आप लीजिए आप परचेज कीजिए बिलाल कहते हैं कि इन करे कैसा हथी नायू मिलाईंदा भलो कंदा आयो अला सफा भलो कंदा इंटेलिजेंट आयो तव्हां
1: हर हथ मिलाइण वारो को दोस्त नाहे
0: और कहते हैं वांदा नहीं हुजेंगे चले अच्छी बात है आप वांदा हो गए हैं तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जब जब वांदा हो जाइएगा हमारा प्रोग्राम सुनिएगा असान तो मौजूद ही मौजूद आयो 1 बजे खां 3 बजे ताईं ओके जो वहां खां जेको सवाल पुछो इहो हुयो त अगरि जेके माण्हू सुभाणे ते पंहिंजो कमु छॾे ॾींदा आहिनि त असां सुभाणे कंदासीं अगरि सुभाणे ई न थिए त पोइ तव्हां छा कंदा इहो ॾाढो हिकिड़ो संजीदा सवाल हुयो जवाब तव्हां ॾिनो इलाही सुठो लॻो जेके जेके माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया

हाँ जी, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। मुझे खबर ना आला शी मैडो के लिए नहीं आया। वो बुद्धो थो ना जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लाइफ कैसे भी चल रही लेकिन हमने

अच्छा निदा, ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत अच्छा काम किया। अब लोग सोचेंगे निदा ने क्या किया है, वो नहीं बताएंगे। अच्छा फजीला कहती है प्यारी टिकटॉक यूज करती है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब यूज करती हूँ।

अच्छा बिलाल समझते हैं पहले से ही इन ॻाल्हि जो कॾहिं टेंशन ई न आहे कयो बाबा माण्हू छा चवंदा माण्हू छा सोचींदा अॻिते थी हवा चंडे अच्छा थकायल गाना वाकई लास्ट लिंक में असां इन लाइ हणंदा आहियूं जीअं जेके माण्हू ॿुधी ॿुधी प्रोग्राम हाणे सोचनि त हाणे बाबा वञण जो टाइम थियो आहे त हुननि खे छॾींदा आहियूं हुननि जे मुंहं में थकायल गाना हणी छॾींदा आहियूं बाक़ी स्टार्टिंग में असां वीआईपी वीआईपी गाना ॿुधंदा आहियूं वरी इनशा तव्हां सां मुलाक़ात असांजी सुभाणे थियण वारी छो त हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु जेको उहो ख़तम थी वियो आहे सफ़ा ख़तम थी वियो आहे अच्छा यूट्यूब यूज कैसे होता है असां यूट्यूब हलाईंदा आहियूं रेस ॾींदी आहियां सफ़ा स्पीड में अरे मां सोचींदी आहियां अगरि यूट्यूब न हुजे हा त मुंहिंजी ज़िंदगी केॾी बोरिंग हुजे हा शुक्रिया ओके सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आप सुन रहे थे वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमें बताइएगा और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी आप हमें बताइएगा इंशाल्लाह तमाम सवारी सुभाणे मिलंदासीं तो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना केते का गलती थी हुजे कोई लव्स गाल हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त हुन लाइ माज़रत कयूं था मोकलाणी नाए बाबू सिन सलामत सा सलामत अला हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर सुमी पोहाणी

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद में सिंधुदास माहिदे बाबत सेमिनार के खिताब कंदे सुत्समा वाले वफाकी वजीर अता तारड़ चवाए तो सिंधुदास माहिदे ते पाकिस्तान जो मौकिफ वाज़े आहे। सिंधुदास माहिदे के खत्म या इन में तरमीम नथी करे सकजे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक चयो तो पाकिस्तान पंहिंजे हिसे जे पाणी ते को बि ठाह न कंदो। सिंधुदास माहिदो दुनिया जे मज़बूत माहिदनि मां हिकु आहे। कंहिंखे बि इलाइक़ाई ऐं आलमी अमन यगमार बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। कतर जे शहर दोहा में अमेरिका ऐं ईरान जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थींदी या न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि विच में अॼु मुलाकात थियण जी दावा, ईरान जो इनकार। सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान सां हलंदड़ हफ़्ते कतर में थींदड़ इजलास अहम साबित थी सघे थो। ईरान एटमी हथियार न रखण ते राज़ी आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त मुफ़ाहमत बेतरफ़ो मामिलो आहे। अमेरिका माहिदे ते अमल कंदो त असां बि ज़िमेवारियूं पूरियूं कंदासीं। धमकियुनि ते असांजो मौक़िफ़ वाज़े आहे। उमान आदन हरमुस ने बहरी जहाजन का ट्रांजिट फीस वठण की मुखालफत कर छी। उमानी पदे वजीर बदर बिन हमद चयो आहे त आलमी उगाड़ण जा हामी ना हूं। माहौलियाती तहफुज ए नेविगेशन बाबत सर्विस चार्जिस से रजाकाराने नमूने गालू कर सकन थी। सिंधा कोर्ट की आईनी बेंच जो वो फैसलो, अरबे रूपये के करप्शन वाले रेफरेंसिस के बीहर एहतसाब अदालत दां मुंतकिल करण जो हुक्म। नैब जो दरख्वास्तू मंजूर, एहतसाब अदालतुनि जा अॻूणा फैसला कल अदम करार। एंटी करप्शन या ॿियनि अदालतुनि ॾांहुं मोकिलियल रेफरेंसिस फौरी तौर एहतसाब अदालतुनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसिस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत। इक़बाल ज़ैद अहमद, अली रज़ा, इफ्तिखार क़ाइम ख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रूपियनि जा रेफरेंसिस बहाल। LPG कोटा, नेशनल बैंक, KPTA ऐं कर्मीरनि जे गैर क़ानूनी मुंतकिलीअ वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा। अॻूणे IG सिंधु गुलाम हैदर जमाली खिलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द आहे त जेकॾहिं गैर कानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे।

सलीम जेसा चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे। हिकु साहिब आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो, मां इम्तिहान वठंदी में बि मज़ा। हैदराबाद जी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। ज़रियनि मूजिबि सेशन कोर्ट जो अमलो राति देर सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड उमीदवारनि जे पेपर वापसि तहवील में पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई। अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो, जंहिं बाद उमीदवारनि जो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॼणा क़तल। हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, 1 ॼणो क़तल। नसीम नगर थाणे जे हंधि अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदनि ज़हूर अली सोलंगी खे क़तल कयो। जेकोबाद वासी नौजवान कराचीअ में क़तल। चनापाड़े वासी नौजवान परवेज अहमद कटो खे शाह लतीफ़ टाउन में क़तल कयो वियो। हिंगोजा वेझो पारवाड़ी क़तल। हिंगोजा पुलिस पारां फोरन जो पीछो करे ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा। दबजी फौत ॻोठ कमोरी में भित किरण सबब सुकरा जी अबू बकर समद दबजी वियो। उन्हनि ॿारनि खे भिते था कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो, जिते डॉक्टर्स फौतकी ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारस न वारे। दही पाणीअ जी खोट ऐं चोरीअ ख़िलाफ़ नवाब शाह टंडोबागो ऐं फैज़ जो एहतजाज। दौर तालके जे वनहड़ो ऐं सकरन शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज, पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। माणिक वाह जे आबादगारनि बदरगंज में अलीगंज एहतजाज जी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवण आहे त वाहन ऐं शाखनि जे इदारनि जो मुआशी क़तल

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसेनु
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध
3: कर खाना खा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी इस हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन जब वो ना माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद उनका उधर से गुजर हुआ तो देखा लंगर खाना नज अभी तक जारी है। दूसरी मरतबा एक माह बाद और फिर तीसरी मरतबा छह माह बाद उधर से गुजरे तो आपने हसबे मामूल इसी तरह लोगों को लंगर खाने से खाना खाते देखा। उनका ख्याल था कि इस गरीब आदमी की दरिया दिली की बदौलत सारा रिस्क चंद रोज में ही खत्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी तक मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अल्लाह ये क्या किस्सा, इसका थोड़ा सा रिस्क अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक उसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिस्क था जो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में कुछ खर्च करता है हम उसका 10 गुना उसको दुनिया में और 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं, जितना ये हमारी राह में खर्च करता है इसका 10 गुना हम उसे दुनिया में ही दे देते हैं, उसमें ताज्जुब की क्या बात है। तो जनाब ये जो वाकया मैंने आपसे शेयर किया है ना, ये लेसन है रह जाने वालों के लिए रह जाता है। और आई डोंट नो कि जो पीछे रह जाने वाले हैं उन्होंने उसके साथ क्या सलूक करना, उस माल के साथ क्या व्यवहार करना है, ये सोचना हमारा काम है कि जो हमें मिल रहा है हम वो मिल बांट के खाएं या उसे तिजोरियों में छुपाए। डिपेंड ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो जी मीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से आपके साथ आपकी मेज

0: अपनी चीज से ज्यादा बहन या भाई की चीज प्यारी लग रही होती है। उस कलर के कपड़े उसे क्यों लेके दिए, मैंने ऐसे लेने थे, उसके कपड़े उठा के खुद ले लेने, ये सब बचपन की, सबके बचपन की गोल्डन मेमोरीज है। हम हाल में वापस आ जाते, आपने मुझे बताना अगर आपको खुद मौका मिले अपना नाम रखने का, आप अपना क्या नाम रखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? नवीद अहमद चन्ना। आपने अपना नाम खुद रखना है, नवीद के अलावा कोई और नाम आप अगर अपना रखना चाहें तो हमें बता सकते हैं।
1: सर बड़ा नाम ये नजीर अहमद
0: चन्ना। नजीर अहमद रखेंगे?
1: जी।
0: क्यों भाई, क्यों, क्या खास बात है इस नाम में, नजीर अहमद नाम में?
1: नवीद अहमद चन्ना।
0: चले अच्छी बात है, खुश रहें आप, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और हमारे लिसनर्स बहुत अच्छे लिसनर्स वो वाले होते हैं जो टॉपिक पे एग्जैक्ट जो है बात करते हैं, हाल अहवाल करते हैं, अपनी राह लेते हैं। वेल डन, वेल डन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और वक्त है कि

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर ए तजुर्बेकार डॉक्टर की निगरानी में मुनासिब फीस दे मरीज एंड जूनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स सर्जिकल ए मेडिकल सहूलतू मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत असो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल मीरवा रोड वेझो डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास। मालूम लाए 03414929824।
3: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मतहयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर आंखों का अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास। फोन नंबर 03032617077। सिंधड़ी
4: आमों की सर आवाम मौजूद जीए मीरपुर खास आवाज जेको अवां जो हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान की पहचान 8 नेटवर्क आवाज़।

दुकान से एक शहरी ने दही का पैकेट खरीदा। जब वो पैकेट लेकर घर पहुंचा इसे इस्तेमाल के लिए, जब उस पैकेट को ओपन किया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए, उस पैकेट के अंदर मुर्दा चूहा मौजूद था। उसने फौरन जाकर किरियाने के मालिक से एहतजाज भी किया, इसकी लापरवाही की आलालेन की, और हुकाम ने कार्रवाई का दायरा वसी करते हुए इस प्रोडक्ट के जितने भी दही मार्केट में अवेलेबल थे उन तमाम को मार्केट से हटाना शुरू कर दिया थे। हम अंधा रहते हैं जो और अब आप कहेंगे कि ये हमें ऐसे बता बता कर ये शायद हमें डरा रही हैं, तो जनाब इन ही वाकियात का ताल्लुक हमारी रियल लाइफ से है।

0: हर पहर जिंदगी की लहर। टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। सुबह
1: मटियारी आज भी मटियारी सुनते रहो जीएफएम 91.6।

0: It's time to commercial break.
1: लाइ ॿिन सालनि जी डिप्लोमा जे कोर्सेज लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि लेबोरेटरी टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी पीडियाट्रिक क्रिटिकल फीस 5000 अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलेटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड एड्रेस मोहम्मद नर्सिंग नियर
2: संगीत जो हैदराबाद मटियारी FM6 सिंध जो आवाज़।

0: आप रही,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज, की जो आवाज, FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

नौजवानी में जिल्द पर चिकनापन बढ़ जाता है और दाने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। पाउडर या फाउंडेशन लगाने से ये नुक्स आर्जी तौर पर तो छुप जाता है, मगर ये मसले का हल नहीं।

के लिए और इसकी देख बनाने में आ रही सन स्क्रीन सन बाकायदगी से इस्तेमाल करें। दिल में चिपते लिहाजा फाउंडेशन और मेकअप या फिर किसी पर इस्तेमाल करें पर बड़ी उम्र क्या होंगी 30 से 40 साल रहती है। उन्हें बखूबी मालची चीज उनकी रात मुरतब करती है। जब आंखों की गिरझुरियां नमूदार होना शुरू हो जाती है, स्किन ली होने लगती है और इस ना करने की वजह से इसके चेहरे पे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। गिजा का खास ख्याल रखें, जो कुछ आप खाएंगे इसके असरात आपकी जिल्द पर भी जाहिर होंगे। फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें और चिकनी और मीठ मसाले वाली अशिया से परहेज करें। इस उम्र में स्किन की कुदरती नमी कम होने लगती है, इससे ड्राइनेस होती है, लिहाजा मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। खास तौर पर मेकअप से पहले क्रीम जरूर लगाएं। नींद की कमी की वजह से आंखें सूज जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं और बाजार में ऐसी क्रीमें बासानी दस्तियाब है जो आंखों की सूजन को खत्म कर देती हैं। इसको लगाने के 10 मिनट बाद कंसीलर लगाएं ताकि हल्के छुप जाएं। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, भरपूर नींद लें और खीरे के कतले काटकर चंद मिनट आंखों पर रखने से थकान दूर हो जाती है। आलू के कतले रखने से आंखों के हल्के कम हो जाते हैं। 25 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को चाहिए वो हल्के शेड के फाउंडेशन और पाउडर इस्तेमाल करें जो आपकी जिल्द की रंगत और बनावट के लिए मौजूद रहे। जनाब ये थी कुछ इन्फो जो आपकी स्किन के हवाले से हमने आपसे शेयर की। अब हम सेगमेंट रिवर्स गियर में आपको मैडम की आवाज में मैडम मलगर तरन्नुम नूरजहां का प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। इस ट्रैक के बाद होगा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अवां जे पांजे शहर मोरो में छाती जी तकलीफ है। दम या साह छाती जी बीमारियों जो माहिर डॉक्टर काशिफ अली बबर एम